0: गोपी निकाली निकाली ना साइन सारी चाहिए दूरी साइन लाने को
1: हाथ जोड़ी कर।

जंजु वंशी निराजे का लानो दाइनो लानो दाइनो ए कृष्ण लानो दाइनो जंजु वंशी निराजे का लानो दाइनो।

कंचुबाई वंच नजादी दिया जा सात वर्ष की थी विवाह उन गयो बुद्धि थी न रती